जो जी हो सो उगवे मोका के आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत में खोइन्याओ महला दूजा नाल ए आनी दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस मावै दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल ए आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक ज्यों।

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ

प्रगट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्व

सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरीक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म गली असी चंगिया अचारी बुरिया मनो कुसुद्धा कालिया बाहर चिटविया रीसा करे तिनाड़िया जो सेवह दर खड़िया नाल खसमै रतियां मन सुख रलिया हुंदै तान नितानियां रहे निमाननियां नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिला हुंदै तान नितानिया रहे निमाननिया नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिला सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया

नानक दे मुखुजले एती छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

चित आवन का सतकाल सर्व सुख को भी जहां जहां खालसा जी सतगुरु तहां तहां रचे आरे आयत देख देव फत हे बिरद की पैद पंथ की जीत श्री

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहा इदाकार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्हों को पंथ नूं विछोड़िया गया।

0: पौड़ी वड़ियों वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण माता तेज अपना आप जार सर्ब कला भरपूर देस है जगता नानक दासन दा तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तृत महत दिवसे रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगे आईया बुरे आईया।

पौड़ी वड़ी वड़ा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब की जान ला, सब किस तेरा वास तेरा कर पला, तेरा कर आनंद उदय तुद घर, माण महता तेज अपना आप जान सर्व कला।

रम्मा शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन का आवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखियो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है काट काट के पट पट की जाना है जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख कर तुहु कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बिदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत
महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, ओत पोज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद सरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवात उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा। कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वड़ाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै। कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तितकार अनहद वाजे।
ਅਨ ਦੱਸਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ।

जाने सुनते पुनीत कहते पवेता सतगुर रहया पर पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवेता सतगुर रहया पर पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती दी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समरक गुरु नानक लई त्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम, सिमरौं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई, जिस डिटै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निद आवै ताय। सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी

बोलों जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका, सर्ब सुख होवे जहां जहां। खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज।

चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। पावनी भगत पाए कौड़ी अग्र भाग राखै, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है। सतगुर दया नित महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो, नेत नेत नेत है। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सूजै दूजी ठाहर, हार परयो तौ द्वारी, लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख सिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख ले हो एह बारी। हाँ आया दूर हों चल कै, मैं तकी तौ शरण आए जियो। मैं आसा रखी चित मह, मेरा सब दुख गवाए जियो। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। अंदर सच्चा नेहु लाया प्रीतम आपणा, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। हुआ सिफत खसम दी, नूर अरसहो कुरसहो चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दा साह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा हो। सत नाम

पाप करे कार मुकर पावा, पेख करा निर्बंध, जतन करा मानुख डहकावा, ओह अंतर जामी जाना, पाप करे कार मुकर पावा, पेख करा निर्बंध, जानत दूर तुम्हें प्रभ नेरा।

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेविय, एहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है। सवना दाविसाह, सजन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है। सवना दाविसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पांजवा। जिस को बिसरै प्राण पत दाता, सोई गन हो अभागा। चरण कमल जाका मन रागेओ, अमै सरोवर पागा। जिस को बिसरै प्राण पत दाता, सोई गन हो अभागा। चरण कमल जाका मन रागेओ, अमै सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस शीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा। रहाओ जह जह पेखो तह नारायण, सगल घटा मह तागा। नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। जह जह पेखो तह नारायण,

0: जी दर्शन प्यासी दिन सिरा चितवो अंदनीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत
1: पहले पहरे फुलड़ा फल पी

अमृत छाड बिख बिख खाय, माया मोह परम पे पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असा महला चौथा, संत कर चौथा, तन तन श्री गुरु राम।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की धुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा
0: जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु न चेतनी मन अपनी सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ियों सुनजे अंदर के खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना फलिए फुलिए बपड़े

0: विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद आगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अवमान कुदरत पौन पानी वैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वर्त

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पन्नहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किसनान की चै दोस्ती सब जग चलन खार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ बे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मंद ऐसी है ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध के विच देह करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसेया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता अकल कला भारपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले जिन की सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है। खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन पुराग करता है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाड़े पेयो नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेयो नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए।

0: Guru Sahib Ji. साहेब जी
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

कर बचित जाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते।

तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसामदे, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदै शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह, सज्जन सच्चा।

जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे, रहाउ जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे, हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना

0: दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सतवट एहो जनेऊ जी का खाईता पांडे घत ना एहो टुटे ना मन लगे ना एहो जले न जाए धन समान सुना निका जुगल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ हो चढ़ पया बेतगा गया।
1: महला पहला लख जोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पहना मियां रात दिन सी नाल तग कपाह हो कटिए बामन वटिया कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए प्राण छुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना टूटई जे तग होवे जोर। महला पहला
0: नाए मने पत उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाई तगना तू सबूत। महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पवे निदाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खी वे तगा पे वत्ते वड़ तागे वरा कते लै पहाड़ करे वे आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका विडाण।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरण न जाई तोती टिका तै जप माली धान मिले शा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जह तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे होई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती तो का खाई हर छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेस्तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा काना चौके पर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आई बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा वन साडा फिटा तन फिटा फेड़ करेन मन जूठे चुली प्रेन कहु नानक सच त्याई है सच हो वह ता सच पाई पौड़ी।